0: कालिका एफएम 95.2 निरन्तरको साथी।
1: मौला कालिका अस्पतालको सेवा अब आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भरतपुर 11 बाइपास रोडबाट।
2: 24 घंटा वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा गर्भवती तथा स्त्री रोग सेवा,
3: शल्य चिकित्सा, पेट, छाती, सुगर, थायराइड एवं मुटु रोग सहित को ICU सेवा,
2: NICU, PICU सहित को बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 4D वीडियो एक्सरे द्वारा बच्चा को संपूर्ण अंग तथा रोग देखना सकिने,
3: मेरुदंड तथा जोर्नी प्रत्यारोपण सहित को हाड़ जोर्नी सेवा, EEG, ECT सहित को मनोरोग सेवा,
2: यूरोलोजी मा MCS गर्नु भएका विशेषज्ञ द्वारा सेवा,
3: प्लास्टिक सर्जरी सम्बन्धी उपचार सेवा।
1: मौला कालिका अस्पताल भरतपुर 11 बाइपास रोड, फोन 0556 93 798 र मोबाइल 98 550 88 002।